0: Like a Gold.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
2: Taxi!
1: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
6: करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहें उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जोर ना जुगती छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: I think it's great. I'm enjoying the tracks. I hope you are, easing you into your Sunday morning. Good morning from Mr. Deep Raja.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू

0: Breakfast with Deep Raja. This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
1: हमारी रक्षक है वो.
2: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
2: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. फॉर UK रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
4: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट. क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ. द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
0: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
5: Dil ne ye kaha hai dil se bol chudiya.
0: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 hour line.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
0: ब्रेकफास्ट विद डीप राजा.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM. तुम देना
1: साथ मेरा. This part of the show is sponsored by O Hamnawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel, at all protected.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: हमारी रक्षा है वो.
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
10: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. फॉर UK रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
12: लंदन, आर यू रेडी? राघव एंड्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे This December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
14: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
13: ये तो बताओ, कोई पता चला?
14: गुरु गुरु,
15: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
14: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
15: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
13: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
16: शीघ्र शीघ्र
15: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November.
10: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Online at Eventbrite.
0: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
17: Khakra Crunch Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
18: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
17: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
0: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
19: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
20: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
19: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
20: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th of September.
21: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
20: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन.
0: ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
22: ब्रेकफास्ट विद डीप रांझा.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साफो ट्रेवल, auto protected।
4: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
5: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इन्विटेशन। 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइसलिप HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मां जरूर जोड़ाओ। वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-287-509।
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: It's this weekend. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network. Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th. Breakfast with Deep Raja.
10: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल। Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे।

0: भाई जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे ओनली। सो आज के ही दिन, टुडे ओनली, हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा कि आज के ही दिन हूँ मैं आपके साथ में। तो कल भी हम मिले थे सुबह 10 से 1 बजे तक, और आज भी 3 घंटे मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन। पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना? संडे मॉर्निंग, जी हाँ, आप सभी ने ट्यून इन किया है आप सभी का फैमिली वाला म्यूजिकल रेडियो, एंड आपका साथ देने में यहाँ पे आ गई हूँ। तो हमेशा की तरह अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आइए सारे के सारे प्यारे लिसनर्स अपनी अपनी अटेंडेंस लगवाइए। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है बस और बस इसी के लिए। हमेशा की तरह एक सवाल, सेकेंड आवर में जोड़ी नंबर वन एंड थर्ड आवर में 3 शब्दों वाला गाना कौन सा होगा, गाना जरूर पूछेंगे आप सबसे। असाइनमेंट होगा, बिल्कुल होगा, एंड असाइनमेंट की शुरुआत होती है अब। संडे 20 ऑफ सितंबर, सितंबर के केवल 10 दिन बाकी हो गए, बस 10 दिन बाकी हैं। तो ये समय बीत रहा है और आप और हम साथ में यहाँ पे म्यूजिकल जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। पहले 2 गीतों के हाथ में आते से एक तो ढोल बजवा दिया, तो 90s वाले बच्चे खुश हो गए, 80s वाले बच्चे खुश हो गए, एंड 70s 60s, हाँ जी हाँ जी, सारे सारे बच्चे खुश होने वाले हैं, क्योंकि किसी ने कल मुझे कहा हाँ हाँ दादी अम्मा 60s वाले बच्चे 70s वाले बच्चे, कभी तो जिंदगी के किसी मोड़ पे बच्चे रहे होंगे ना, बस वही इसीलिए कह दिया बच्चे, क्योंकि उस एरा में शायद आप बच्चे रहे होंगे और आप बड़े बन रहे होंगे। चलिए आज की असाइनमेंट, सिर्फ गपशप चाहिए, गाने वाने भी सुनना है ना। ओके, तो आज का असाइनमेंट, बचपन में लगता था कि बड़े हो जाए, बड़े हो गए तो बचपना याद आता है, एंड हम सभी बड़े बन के ऐसे कुछ करेंगे ऐसे हम सोचते रहते थे, पर बड़े बन जाते हैं तो फिर भी छोटेपन की जो चीज़ें होती हैं, बचपन की जो चीज़ें होती हैं, वो हम कंटिन्यू करते हैं। ग्रोन अप एडल्ट होने के बावजूद एक चीज़ जो मैं बड़ी शिद्दत से करती हूँ, एंड दैट इज़ पराठा रोल करके खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मेरी आई जो है अचार का जो मसाला हुआ करता था वो पराठे पे लगा के उसके ऊपर हल्का सा ऑयल, उसका रोल बना के हमको देती थी। सो व्हेन एवर आई ईट पराठा आई रिमेंबर दैट, आई नो कल हमने चाय पे भी बात की थी, सो यस चाय पराठा इज़ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन। अच्छा होता क्या है कि लोग जीने के लिए खाते हैं और मैं खाने के लिए जीती हूँ, बस इतना ही फ़र्क है। तो बताइए फटाफट, बचपन की जो चीज़ें अभी भी चल रही हैं, कितने भी बड़े आप हो गए हों, लेकिन नहीं यार वो सब चीज़ें ना रहेंगी साथ में, बताइए जल्दी जल्दी। एंड वॉल्यूम आप रखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट जो लगी ना आज, आप तो उफ आह वाओ यही बोलने वाले हो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी 80 पैसे, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: The Cycle of Love from executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
5: I left behind everything I knew.
4: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
5: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
4: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
6: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
8: Main nikla o gatti leke aaye ho mere
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: માયાભાઈ ની મોજવાણમાં થઈ જાઓ રેડી. માં કૃપા ફાઉન્ડેશન્સ યુકે પ્રેઝન્ટ્સ ભવ્ય ડાયરો, માયાભાઈ આહિર, જયશ્રી ભોજવિયા અને નિર્મળસિંહ ઝાલા સાથે 26 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ.
9: વેન્યુ: ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 3, 10 સ્ટોન ફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલીપ, HA40JS.
8: ટિકિટ્સ 30, 40 and 50 pounds. લાઇટ રિફ્રેશમેન્ટ ઇન્ક્લુડેડ.
9: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
12: Southall Travel can take you there.
13: Southall Travel, at all protected.
14: Couches. 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
15: Couches, pure ghee. Har chamach mein.
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
17: No, sorry, mate.
18: No, we don't have that part.
19: Have you tried down the road?
20: We can get it in, but it won't be for a few days.
21: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
22: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
23: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
24: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
25: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स नियरली 28 मिनट्स पास्ट 10, 10:28. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. मेरा नाम है अश्विनी. आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे. आई नो, सरप्राइज राइट? लेकिन अगले सप्ताह हमारी रितु जी वापस आ जाएंगी आपका मनोरंजन करने के लिए. मैं केवल कल और आज के दिन आपका साथ निभा रही हूँ. आई एम रियली हैप्पी कि आप सभी जो है ये प्लेलिस्ट एंजॉय कर रहे हैं. पर साथ में ये भी बता दें कि फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक अ रेडियो नेटवर्क. इट टेक्स प्लेस एट ओवर वैमली अरेना. 27 सितंबर को होने वाला है ये प्रोग्राम. एंड जाके जरूर देखिए.

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Tasty Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: पता है अच्छे गाने प्ले करने का फायदा क्या होता है कि जो साइलेंट लिसनर्स होते हैं ना वो भी आके कहते हैं क्या बात है मजा आ गया। तो ऐसे आई प्रॉमिस यू ऑल कि ये पूरे 3 घंटे वॉल्यूम अप रखिएगा एंड आई एम श्योर आज आपके घर के लोग कहेंगे कि क्या बात है भाई, मतलब हमेशा ही तुम लाइका गोल्ड सुनते हो और इतने खुश रहते हो। आज के संडे कुछ स्पेशल है क्या ना, आज की 20 तारीख है और अश्विनी ने हमारा साथ निभाया था जी। तो प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है और वैसा भी हो जाता है, तो ऐसा क्या हुआ और वैसा क्या हुआ। तो ये बात तो खैर अभी काफ़ी समय पहले की है, 2014 में ऐसा हुआ था, 2014 में चाइना में एक आदमी ने अपने प्यार से हाँ बुलवाने के लिए, उसे पटाने के लिए, उसे प्रपोज करने के लिए 99 आईफोन 6 लिए, हार्ट शेप में उसे अरेंज किया, जायंट हार्ट शेप उन 99 फोन्स को रख के बनाया और उसे प्रपोज किया। अब कोई लड़की होती तो क्या करती, 99 फोन्स लेके बेच देती ना, लेकिन इस लड़की ने सीधे बेचारे को मना किया और वहाँ से चली गई। सोचिए क्या क्या हुआ होगा उस इंसान का। रिजेक्शंस, यस आई बी टॉकिंग अबाउट रिजेक्शंस, तभी तो मैंने इस टॉपिक पे बात की है। रिजेक्शंस जो हैं वो बहुत कठिन होते हैं लेने के लिए हम सभी के लिए, और रिजेक्शन केवल प्यार में नहीं होता है, रोज़मर्रा की लाइफ में भी होता है, छोटे छोटे चीज़ों से रिजेक्शंस, एंड उससे हमें अपना वैलिडेशंस चाहिए। ना मत कीजिए, इट्स ओके, व्हेन समथिंग इज़ मेंट फॉर यू वो आप तक पहुंच ही जाएगा, है ना। सो पहले भी हम लाइफ थियरीज में, मैं आप सबको जब शाम में मैं आती थी शोज़ में तो आपको बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, लेकिन रिजेक्शन हैंडल करना हम ह्यूमंस के लिए ना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। सामने वाले पे हम अपना एंगर, अपना रोष दिखाते हैं, लेकिन सोचिए समझिए कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उस रिजेक्शन में छुपा होता है। आप अपने रिजेक्शन के साथ में कैसे डील करते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को जो फीड करते हैं ना मेंटली, वो स्टोरी जो अंदर चलती रहती है वो स्टोरी सिर्फ हमारी होती है, एंड ब्रेन जो बताता है कि ये सही था वो गलत था, होता है, यस वी आर ह्यूमंस, लेकिन अपने आप के लिए ऐसी स्टोरी बनाइए जो स्टोरी सुन के आप खुश हो जाए ना कि दुखी हो। तो कौन सी स्टोरी सुना रहे हो अपने आप को?
2: Like a gold ace 5. Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.
1: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 020-8574-8410. Southall Travel is it all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Home is where it all begins. And Starbucks is the home of autumn. We've made the season a thing, so we know our way around it. A taste of autumn, however you like it. Whether you want to keep things hot with the iconic pumpkin spice latte or play it cool with our new iced apple crumble matcha latte. Come on in and stay as long as you'd like. After all, you're back at the home of autumn. Subject to availability while stocks last.
2: This is Ritu Sharma.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
7: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th of September।
8: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
7: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आवर रेडियो नेटवर्क।
9: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. assuming you want to get noticed.
10: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11, 11.
11: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
13: Danu 11, 11. Danu Properties.
14: We're finally going home for the wedding.
15: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
16: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
15: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
16: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
15: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
16: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
17: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
18: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
19: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
18: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
19: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
18: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: मैं हूँ अनीसा नासिर, लाइका गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में। मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।

0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.52 इंडियन रुपी, 86.42 अफगान अफगानी, 371.4 पाकिस्तानी रुपी, 164.77 बांग्लादेशी टाका, 442.95 श्रीलंकन रुपी, 173.48 कैनियन शिलिंग, 1.33 यूएस डॉलर, 63.74 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £105.11 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 10. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स. मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे. सेकेंड आवर में हिट जोड़ी जो है, जोड़ी नंबर वन, उसके बारे में बात होगी. थर्ड आवर में थ्री वर्ड्स वाला गाना कौन से लेके आई हूँ उसके बारे में भी बात होगी. मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन चल रहा है, आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं हर एक गीत पे, जो उफ आहा आ रहा है, बड़ा मज़ा आता है. नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ वो है आए दिन बहार के. 1966 में ये गीत नहीं, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, ये कली जब तलक. पूरी कोशिश होती है कि सारी वेरिएशन आपके लिए लेके आएँ, सारे कंपोजर्स और सारे के सारे सिंगर्स भी जो हैं एक शो में कवर करें. इतना वास्ट सिलेक्शन है हमारे पास में, 3 घंटे कभी कभी कम लगते हैं, लेकिन एज आई सेड की कोशिश जारी है कि आप सबका मनोरंजन करते चलें. ओके, सेंड मी पिक्चर्स फटाफट, क्या बनाए भाई आज किचन में, ब्रेकफास्ट में क्या हुआ आज, कोई जलाने नहीं होगे मुझे, नहीं भेजोगे फोटोज. चलते हैं आखिर गीत की तरफ.
0: Like a radio network.
2: ये है Like a Gold.
3: क्योंकि सांस भी कभी.
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: London, get ready for an unforgettable night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
7: हमारी रक्षक है वो.
8: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
8: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas Friday 25th September. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
11: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
0: It's This Weekend. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.

0: जिंदगी वहाँ सेटल माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
2: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
6: डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Like a Goal. Like a Goal. London ka number one Asian retro music station.

0: This is Like a Gold Greater London. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford.
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ डोंडीबा आई का ओ जर्नल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: Welcome, this is the second hour of mid-morning show. My name is Ashwini. I'm sitting in for Ritu today. अच्छा सच्ची बताओ कितने लोगों ने ये लास्ट पिट पे डांस किया ये जबर ये लाजुनों को आई लव द मस्ती वैन किशोर कुमार जी के गीत हम प्ले करते हैं जैसे जय जय शिव शंकर एंड राफ्ता राफ्ता सो मेनी ट्रैक्स पड़ोसन के गीत मैं यहाँ पे सुपर डुपर डांस करती रहती हूँ ओके एंड ऑब्वियसली आई रिकॉर्ड दैट एंड आई पुट ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल और हमारे लाइका गोल्ड के इंस्टाग्राम पे भी आपको हमारी छोटी छोटी क्लिप्स दिखती हैं माय इंस्टाग्राम इज़ रेडियो वाली अश्विनी तो फुल ऑन मज़ा मस्ती चलता है मेरा तो स्टूडियो में एक तो डांटने के लिए मम्मी नहीं है पापा नहीं है हस्बैंड नहीं है बच्चे नहीं है कि इतने बड़े वॉल्यूम में क्यों तुम गाने सुन रही हो सो जितने भी लोग गाने सुन रहे हैं मेरा एक तो जो मैंने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को सारे के सारे फैंटास्टिक ट्रैक्स मैं सुनाने वाली हूँ तो वो प्रॉमिस मैं पूरा रखने वाली हूँ येस आई डिड गेट माई चाय इन दिस टू सॉन्ग्स एंड आज का ये जो सेकेंड आवर का हमारा जो फीचर होता है एंड दैट इज़ जोड़ी नंबर वन सो शम्मी कपूर एंड आशा पारेख की जोड़ी मैंने सिलेक्ट की है और उन्हीं की फिल्मों में से अगले दो गीत मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं घर में नाश्ता खाना क्या बन रहा है वो बता रहे हो कौन कहाँ शॉपिंग गया था कितनी चपत लगी हाँ ये भी और खाने में जब आप लोगों के मेन्यूज़ मुझे आप दिखाते हो तो मैं मेरी तरफ से भी सजेशन डाल देती हूँ कि अच्छा इसके साथ में ये बना के देखो ना यस द गृहिणी द मम्मी द हाउस वुमेन इन मी डेफिनेटली शी जम्प्स अप एंड इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है इट एक्चुअली डज ये सजेशंस ना काम में भी आते हैं राइट सो काफ़ी फनी वियर्ड सी बातें भी हम करने वाले हैं इस आवर में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पर हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं गुस्सा होते हैं खफा होते हैं और साथ में कभी कभी न्यूट्रल होते हैं हाँ ठीक है यार हो गया तो हो गया रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओके
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी 80 पैसे डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: We hit Leica Gold.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेते हैं एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 11:26, इट्स 11:26. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे। तीसरी मंजिल, इस फिल्म से सुनाया आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी को ये गीत। म्यूजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है ये फिल्म, डायरेक्टेड बाय विजय आनंद, फीचरिंग मेमोरेबल म्यूजिक बाय आर डी बर्मन। नेक्स्ट गीत आपको सुनाने वाली हूँ इन्हीं की जोड़ी के फिल्म सा फिल्म से, विच इज कॉल्ड पगला कहीं का। सो पगला कहीं का गीत सुनाए, लेकिन उसके पहले कुछ कुछ पागलपन हमारे साथ भी होता है रोजमर्रा की लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कभी हम एज आई सेड अलग अलग इमोशंस में आ जाते हैं। जैसे सुपरमार्केट, जब हम जाते हैं सुपरमार्केट में, हमने अपनी चीज़ें ले ली, अपने बास्केट में डाल ली, और हमारे पहले, अगर हम जा रहे हैं बिलिंग काउंटर पे, हमारे पहले किसी के पास में बड़ी ट्रॉली में पूरा सामान ऐसे भरा है कि 100 चीज़ें, तो उनके पहले भाग के हम जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपना बिलिंग करवाना होता है। बस स्टॉप पे भी है ना, कोई बस मिस नहीं होती है, ऐसा हम सोचते हैं कि मिस नहीं होगी, लेकिन कितनी बार बस के पीछे भागते दौड़ते हुए, मैं खुद को कितनी बार सिमरन समझ के दौड़ पड़ी थी बस पकड़ने के लिए कि कोई तो राज गाड़ी रोक के मुझे हाथ दिखा कि आओ आओ इस बस में सवार हो जाए, लेकिन ना हुआ ही नहीं ऐसे। द बिग बैग, बिन बैग जगल, ऑब्वियसली बिन बैग्स जो हम डालने जाते हैं, जो जो अलोकेटेड डेज है हम सबको अपनी अपनी सिटीज में, तो स्लीपर्स अटका के, अपने गाउन अटका के, जब हम बाहर आते हैं और जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ऊ करते हुए हम बिन बैग्स डालते हैं, और तब अगर बहुत तूफानी हवा है और वो बिन बैग्स उड़े, तो हमारा पारा नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। यस, अनएक्सपेक्टेड आइटम इन बैगिंग एरिया, ये जब हम सुनते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं कि कुछ तो नहीं है, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ यार, ये क्यों आ रहा है ऐसे अनएक्सपेक्टेड, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं एक्स्ट्रा। उस समय लोगों के एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं। ये सुपरमार्केट में ना ऑब्जर्वेशंस किया कीजिए आप, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। पासवर्ड पैनिक, ओह माय गॉड, ये तो होता ही रहता है कि बैंक की कुछ काम करने बैठे हैं, 3 बार आपने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, लास्ट अटेम्प्ट बिफोर लॉकआउट आ जाए तो हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर ऐसा जंप करता है ना। एंड घर में जो अलार्म बजता है, हम सभी एशियंस हैं, अगरबत्तियाँ, धूप जो है ये बहुत लगती है, मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके बाद जो पाया अलार्म, मतलब इतना सा भी धुआं होता है, टों टों टों करके जो बजना शुरू होता है, तो उसमें सारी खिड़की दरवाजे खोलो, वो पाया अलार्म के पास में नैपकिन्स ले लेके उसके सामने वो हवा करो, आई माय गॉड, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों के यहाँ पे भी ये सब होता होगा। इससे अलग कुछ है तो मुझे ज़रूर लिख के बताइए। नेक्स्ट ट्रैक, ब्यूटिफुल ट्रैक, थोड़ा सा ठहराव वाला, लता मंगेशकर की आवाज में, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: हर रोज ही किसी ना किसी के लिए बहुत स्पेशल होता है, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी की नौकरी लगी, किसी की नौकरी छूटी, किसी का दिल जुड़ा, किसी का दिल टूटा, लेकिन हर रोज़ हम सब के लिए होता है बहुत बहुत स्पेशल। तो आज हिमांशु पटेल जी ने आते से ही मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरी बेटी का बर्थडे है, क्या आप उन्हें विश कर सकते हैं। तो सीनल, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आपके पापा जो हैं चाह रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द शो से कि मैं आपको विश करूँ लाइक अ गोल्ड पे। आई थिंक किसी भी फादर का गुरूर होता है उसकी बेटी। यस, एंड व्हेन फादर्स बिलीव इन देयर डॉटर्स ना, तो यकीन करिए वो डॉटर्स मैजिकल बन जाती हैं अपने आप में। बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी उम्दा पर्सनालिटीज़ होती हैं। एंड लेट मी टेल यू कि किसी भी फीमेल के लिए पहला मेल इंटरेक्शन होता है उसके फादर के साथ में। सो व्हेन योर फादर बिलीव्स इन यू, व्हेन योर फादर सपोर्ट्स यू, आप बिलीव करना स्टार्ट करते हैं उस प्रजाति पे, है ना। एंड किसी भी मेल के लिए पहला फीमेल इंटरेक्शन होता है उनकी मम्मी के साथ। तो हम जब एज पेरेंट्स अपने रोल में उतरते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी तरीके से आप अपने बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं उस जेंडर के प्रति आप उन्हें एक ओपिनियन बनाने में मदद कर रहे हैं या फिर चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर रिश्ते होते हैं हम सब के लाइफ में। एंड बिकॉज माई फादर बिलीव्ड इन मी ऑलवेज, एंड दैट वॉज द फर्स्ट इंटरेक्शन फॉर मी, द मेल इंटरेक्शन विथ माई फादर। एंड बिकॉज ही बिलीव्स, मुझे लगा कि हमेशा यू नो देर आर ब्यूटिफुल मैन आउटसाइड इन द वर्ल्ड। एंड येस, आई हैव मेट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन, अमेजिंग मैन अराउंड द वर्ल्ड। और होता है, हम सब भी जो होते हैं ना वो बनते हैं बिकॉज अपने अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर जब हम काम नहीं करते कॉन्शियसली। जी हाँ, नो ज्ञान वाला नो ज्ञान नो लेक्चर। अभी बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पापा लोग प्लीज़ अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों में बिलीव करें और उन्हें सपोर्ट करें। सो जिनका जिनका बर्थडे एनिवर्सरी है, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।
2: Riti Sharma on Like a Gold.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.
1: पॉडकास्ट में एपिसोड 34 आ चुका है मॉडर्न हैरेसमेंट। दीप राजा ने इसे होस्ट किया है। दीप राजा स्पीक्स टू संगीता पांडे ऑफ IIW एंड गायत्री शिनॉय, प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट, अबाउट मॉडर्न हैरेसमेंट। दे एक्सप्लोर मॉडर्न हैरेसमेंट एट वर्क, फैमिली एंड व्हेन वन शुड स्पीक अप। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पे हम बहुत सारी वेराइटी आप सबके लिए लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों के लिए आई ओपनर्स हैं, अवेयरनेस हैं। तो ज़रूर देखिएगा लाइका पॉडकास्ट जो है, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर streaming platforms.
2: Like Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Ye hai Like a Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
9: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
8: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
9: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
8: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
10: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
11: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
13: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
14: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
16: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
17: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
16: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
18: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208 951 0111.
19: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
20: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja talks about modern harassment.
21: A lot of the time, women, they can be unnecessarily harassed, hassled, not in a very nice way.
22: Subtle way.
21: You know it's happening. They know it's happening. When are we going to actually speak up and say,
22: now,
21: hang on, uncle, that wasn't right, mummy, do something.
22: Now is the time to do it,
21: right,
22: actually.
21: How?
20: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is Leica.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.49 इंडियन रुपी, 86.35 अफगान अफगानी, 371.37 पाकिस्तानी रुपी, 164.79 बांग्लादेशी टाका, 442.93 श्रीलंकन रुपी, 173.48 कैनियन शिलिंग, 1.33 यूएस डॉलर, 63.74 मॉरिशन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £105.11.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स नियरली 50 मिनट्स पास्ट 11. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स. अभी जो गाना प्ले किया था ना, तो मेरा पड़ोसी जो है ना अनुज, वो आके मुझे कहता है यार क्या गाने प्ले कर रही हो. मतलब सोचिए आप, हमारे लिसनर्स आप तो सुनते ही हैं, लेकिन हम जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, हम भी एक दूसरे की चैनल पे ये कौन सा गीत प्ले कर रहा है, ये कौन सी गीत प्ले कर रही है, हम देखते हैं. यस यस, आई जेन्युइनली एंजॉय मीटिंग ऑल माय फेलो प्रेजेंटर्स, और हम लोगों का बहुत यहाँ पे मस्ती मज़ा इंटरेक्शन चलता है, जैसे चलता है इंटरेक्शन आप सबके साथ में. इस आवर का आखिरी गीत आप सबके लिए मैं पेश कर रही हूँ, दैट इज पेश कर रही, तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं गाने वाली हूँ, है ना. नाइस ओविश. मेरी आई, मेरी मम्मी की आवाज़ इतनी प्यारी थी, शी वॉज सच अ मेलोडियस सिंगर. आई विश आई कुड सिंग. कभी कभी होता है कि अपनी पेरेंट्स से हम हल्के से जेलस होते हैं कि मम्मी यार ये तुम्हारी चीज़ मुझ में होती तो कितना अच्छा होता. कामचोर फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को तुझ संग प्रीत, एंड दैट इज किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में. दिस विल बी द लास्ट ट्रैक ऑफ सेकेंड आवर. थर्ड आवर की तरफ हम बढ़ रहे हैं. थ्री वर्ड्स वाला जो गेम है, थ्री वर्ड्स से आपको बताना है कि कौन सा गीत मैं आप सबके लिए फिर से पेश करूँ या सुनाऊँ. This is Laika Gold Radio. My name is Ashwini. I'm sitting in for Ritu today.
0: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Laika Gold is 5. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. Cow's
2: choice. 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666. Cow's choice, pure ghee, har chamach mein,
3: shuddh desi swai. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
4: ये तो बताओ कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
4: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र.
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
11: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
10: Simply use use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
7: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
10: ICICI Bank UK. Transfer now. Celebrate together.
11: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLC supply.
12: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
13: Taiyar ho jaiye ek yaadgar show ke liye.
14: Ram aur Sita ki kahani ab stage par zinda hone wali hai. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
15: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
16: Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: We're finally going home for the wedding.
18: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
17: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
18: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
17: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
18: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
17: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
19: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
20: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
21: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th. Ritu Sharma, live on Leica Gold, Greater London. Thank you for five glorious years. Leica Gold.

0: वेलकम जी, वेलकम। दिस इज द थर्ड एंड द आखिरी पड़ाव ऑफ द मिड मॉर्निंग शो जो करती हैं ऋतु जी। मेरा नाम है अश्विनी। आई हैव बीन कवरिंग ऋतु यस्टरडे एंड टुडे। सो यस, अगले सप्ताह ऋतु जी वापस आएंगी इस हॉट सीट पर, आपका मनोरंजन जरूर करेंगी। सो थर्ड आवर होता है थ्री वर्ड्स वाला जो गीत है, वो कौन सा गीत है, ये सवाल मैं आप सबसे पूछने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले बात करते हैं इन दो गीतों की। 90s का ये मेरा फेवरेट गीत आईना फिल्म से कुमार सानू एंड आशा भोसले की आवाज़ में मेरी सांसों में तुम, उसके बाद में एक दूजे के लिए लता मंगेशकर एंड SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में हम बने तुम बने। इसमें तुम हो बुद्धू तो बुद्धू मुझे इतना अच्छा लगता है ना, होता है ना कुछ कुछ गीतों के कुछ कुछ वर्ड्स हमारे साथ में रह जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मैं आप सभी से सवाल पूछने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले आज ऐसा शायद किसी का बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा आज, और क्या मनाया जाता है, आज मनाया जाता है नेशनल पेपरोनी पिज्ज़ा डे, उसके बाद में नेशनल फ्राइड राइस डे, नेशनल इंक्लूजन वीक, सबसे इम्पॉर्टेंट वाइफ अप्रिसिएशन डे है। अब वाइफ अप्रिसिएशन डे में अगर आपके सिर में आइडिया ना आए कि अश्विनी जी अब यार आपने मतलब दोपहर के 12:20 हो रहे हैं और अब आप बता रहे हो वाइफ अप्रिसिएशन डे, तो अगर वो रेडियो नहीं सुन रही हैं और अगर आपको उनको स्पेशल फील करवाना है तो बिल्कुल मत बताना कि मैंने आपको बताया कि आज आप उनको कहीं बाहर लेके चले जाओ खाना खाने के लिए, घर पे कुछ लेके आओ खाना खाने के लिए, या फिल्म देखने लेके जाओ, है ना। वाइफ अप्रिसिएशन डे यार, कोई भी रिलेशनशिप में अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली वाइफ अप्रिसिएशन डे बहुत बहुत ज़रूरी है ये एक सुखद मैरिज के लिए एक सुखी परिवार, एक सुखी वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विथ मी वाइफ अप्रिसिएशन डे बिल्कुल हो चुका है। कल शाम गणपति बापा के दर्शन करने मेरे फ्रेंड्स आए थे, तो माय हस्बैंड ऑलरेडी गॉट लॉट्स ऑफ फूड, तो आई हैव टू लाइक छुट्टी फॉर नो कुकिंग, सो माय अप्रिसिएशन इज़ ऑलरेडी डन। तो अगर आप भी अप्रिसिएट करना चाहते हैं अपनी वाइफ को, एंड ऑल दोज वाइफ जो भी किचन में खड़े होकर सोच रही थी कि मैं क्या खाना बनाऊँ, तो आहा वाइफ अप्रिसिएशन डे वसूल कीजिए जाके राइट। अब आई होप शो के एंजॉयमेंट के साथ साथ आप फूड भी एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आते हैं असाइनमेंट पे, क्या लगा अश्विनी खुश हो जाएगी, हाँ शाबाशी देगी और सवाल नहीं पूछेगी, ना ना थर्ड एंड द आखिरी आवर है, तो सवाल ये कौन सी गीत की बात मैं कर रही हूँ, बात रह कर दूर, ये कौन सा गीत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उल्टा पुल्टा है ये थ्री वर्ड है, इसको लेके मुझे बताइए कि ये कौन सा गीत है जिसके शब्द आपको बताए जा रहे हैं, बात रह कर दूर, लिख के भेजिए। चलते हैं आगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Give your home its autumn glow up with Dunelm. Cushions and throws that make your sofa impossible to resist. Done. Cozy curtains that keep the heat in when it's colder out. Done. Table set for dining in without forking out. Done. Your perfect bedding for a longer, deeper sleep. Beautifully done. This autumn, make your home feel a little more you. With Dunelm, the home of homes.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Have you noticed the way fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
8: Hey, gorgeous! join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
9: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
8: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
9: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
10: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
11: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
13: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
14: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
15: No more worries for me.
16: Southall Travel, at all protected.
17: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
18: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
19: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
20: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
19: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
21: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
22: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
21: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, LIKA Radio Network.
23: LIKA Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LIKAGold.com.
24: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, LIKA Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: चलिए मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 12:26। इट्स 26:12। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे। रितु जी आने वाली हैं अगले सप्ताह, तो ज़रूर साथ दीजिएगा। एंड हमारे बाद जो प्रेजेंटर आते हैं वो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उनका भी साथ देने के लिए रही है तैयार। तो थ्री वर्ड्स जो मैंने पूछे कि आखिरी आवर का ये जो फीचर है थ्री वर्ड्स वाला, ये कौन से गीत की बात कर रही हूँ? बात रह कर दूर, बात रह कर दूर, ये कौन से गीत की बात मैं कर रही हूँ? ज़रूर लिख के भेजिए। और एक अजीब से इंसिडेंट में देखने मिला, तो किसी दूसरी कंट्री का ही ये सीन था एक्चुअली। एक लड़की जो है पेवमेंट पे से चलते हुए जा रही है, सामने से बाइक पे एक लड़का आता है, उनकी तरफ बंदूक दिखा के उनका फ़ोन मांगता है। तो वो लड़की आती है, उसके हाथ में फ़ोन देती है, कहती है मेरा फ़ोन तो तुम ले जाओ, बस फैक्ट्री रीसेट मुझे करने दो। बड़ी शांति से वो चोर वहीं पे खड़ा रहता है और फ़ोन उसी के हाथ में रखता है, खुद के हाथ में। एंड वो लड़की जो है पूरा फैक्ट्री रीसेट उस फ़ोन पे कर देती है और कहती है मेरा फ़ोन लेके जाओ। और ये ना किसी CCTV में एक्चुअली कवर हुआ है ये जो इंसिडेंट है। एंड दोनों भी इतनी शांति से, वो चोर भी एक बार वो फ़ोन हाथ में लेके फिर पीछे पलट के उस लड़की की तरफ देखता है, एंड वो शांति से जा रही है, नो दुख दर्द पीड़ा। आई मीन मे बी शी कंट्रोल, बिकॉज ऑब्वियसली उस बंदे के पास में बंदूक थी, पिस्टल थी, सो अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी था उसके लिए, शायद इसलिए हुआ रहेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने एंगर को कंट्रोल रखना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ना, सोचिए ना, अगर एंगर लोग कंट्रोल करना सीख जाएँ तो आपको लगता है कि जो जेलें बनी हैं अलग अलग देशों में, वहाँ पे थोड़ी सी भी भीड़ होती? सोचिए और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट ट्रैक जॉन ही मेरा नाम फिल्म से,
1: ये है Like a Gold, feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: ये है Like a Gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.47 इंडियन रुपी, 86.36 अफगान अफगानी, 371.34 पाकिस्तानी रुपी, 164.67 बांग्लादेशी टाका, 442.89 श्रीलंकन रुपी, 173.46 कैनियन शिलिंग, 1.33 यूएस डॉलर्स, 63.73 मॉरिशियन रुपी.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LIKA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Gold is currently trading at £105.11 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: चलिए मिला लेंगे घड़ियां एक बार आखिरी बार और देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 12. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. माय नेम इज अश्विनी. आई हैव बीन कवरिंग ऋतु यस्टरडे एंड टुडे एंड व्हाट अ प्लेजर टू बी ऑन दिस हॉट सीट एंड इन फ्रंट ऑफ दिस माइक एंड द फोर स्क्रीन्स एंड बड़े बड़े स्पीकर्स. आई जेन्युइनली फील ब्लेस्ड जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ और आप सबसे बातें होती हैं. बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी फीलिंग है. आई एम इन ग्रैटिट्यूड कि आप सबसे मैं कनेक्टेड हूँ थ्रू मैसेजेस, थ्रू सोशल मीडिया. माई सोशल मीडिया एज रेडियो वाली अश्विनी, दैट इज़ माई इंस्टाग्राम. एंड हमारी छोटी छोटी क्लिप्स और छोटी छोटी बातें आप हमारे इंस्टाग्राम लाइका गोल्ड रेडियो पे देखते रहते हैं. हमेशा की तरह इतना ही कहूँगी कि भाई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. अपने मन जहन दिमाग में जो भी चीज़ें हैं बोल के बताएं. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, राइट? सो लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग. तो हमेशा प्यार दो, प्यार लो एंड अपने आप का खूब ख्याल रखो. अपने आप से कहो कि आई हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी. बहुत सारे लोगों ने आज मुझे कहा, जिन्होंने शायद मुझे पहली बार सुना हो, कहा कि अश्विनी तुम बड़ी खुश लग रही हो. मैं खुश इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड किया है, आई हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी. वैसे आप भी डिसाइड करें लास्ट ट्रैक के साथ. हियर आई से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय. अनुराग इज नेक्स्ट.
1: ये है
5: Like a Gold.
6: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.
1: Ye hai Like a Gold.
4: Like a Gold.
7: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी. रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी. कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइस्लिप, HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777 227 5 09.
10: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
11: हमारी रक्षक है वो.
12: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
13: मुझे जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
12: मिस्ट्री, fantasy, action. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas Friday 25th September. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
13: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
14: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
15: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
14: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
15: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
16: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
15: Book now on diwalistory.com before they are gone. Official TV partner ZTV and exclusive radio partner Leica Radio Network.
17: Harrow, famous Spice Village is now open in Harrow. Sizzling mixed grills, signature masala fish, rich, delicious karais and fresh naan straight from the tandoor. And with one of the biggest vegetarian menus prepared in a separate vegetarian kitchen. So bring your family, bring your friends and taste the award-winning flavour of Spice Village. Find us at 1-4 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now open. Your new place to eat, meet and celebrate.
2: Up next, Golden Rock with Unrock on Like a Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Classic Throwback is brought to you by Like a Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Like a Gold 2. Available at LikeAradio.com, via Alexa or by using our Like a Radio mobile app.

0: सुदेश भोसले साहब, कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देशपांडे जी की आवाज में अग्निपथ पथ फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इस फिल्म का दिया था संगीत। और कमाल की ये फिल्म थी, बच्चन साहब और मिथुन चक्रवर्ती साहब का बड़ा ही कमाल का किरदार, कांचा चीना को भी आप नहीं भूल सकते हैं। लेकिन आज ये भक्तिमय वाला जो माहौल क्रिएट किया गया है गोल्डन राग की सुपर संडे वाली महफिल में, वो इसलिए किया गया है क्योंकि भाई मेरे दिन की तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आई विश की आप सबकी भी हुई होगी, क्योंकि होनी ही चाहिए। और बप्पा का जब आपको सुबह सुबह आपके दिन की शुरुआत में ही आशीर्वाद मिल जाए, तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अब पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं फैमिली के साथ अपने बहुत ही करीबी दोस्त मल्हार और ओमकार साहब के घर गए, क्योंकि आज उनके घर पर विसर्जन था फैमिली में। और जैसे ही बप्पा घुसते ही उनके घर पर बप्पा पर जब नज़र पड़ी, तो ऐसा लगा कि मुंबई में हो। एक पल के लिए ऐसा ही लगा, क्योंकि इस वक्त हम इतना बिजी हुआ करते थे, कभी किसी एक्टर के घर पर बप्पा का विसर्जन है, वहाँ पर हमें पहुँचना है, मिलना है और कवर करना है उसे, और उसके बाद उसके पैकेजेस बनाने हैं, फिर उसे टेलीकास्ट करना है, बहुत सारा काम होता था। लेकिन मज़ा बहुत आता था, क्योंकि हर वक्त लोगों के, ख़ासतौर पर दही हांडी हो, गणेश उत्सव हो, मुंबई के अर्सना बड़े ही दिल के साथ, जोश के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। और इसलिए भी अच्छा था क्योंकि बिल्कुल परिवार जैसे उनके माता पिता मिस्टर अतुल आंबेकर और मिसेस प्रज्ञा आंबेकर भी वहाँ पर मौजूद थी, जिनको देखकर ऐसा लगा कि बिल्कुल फैमिली से मिले हों। और बिल्कुल वैसा ही प्यार और मोदक जो सबसे अहम प्रसाद माना जाता है, वो खाने को मिला। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं अपने घर पर हूँ। तो इसलिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई, और मैं चाहूँगा कि आपकी भी ऐसी शुरुआत हो। इसलिए छोटा सा ये हमने आपको ये कैसे अभी मेरे साथ जो हुआ वो किस्सा सुना दिया। आई होप आप लोग रिलेट करेंगे कि जब आप की शुरुआत दिन की अच्छी होती है तो कितना मज़ा आता है। तो एक बार फिर से अपने अपने घरों से जहाँ पर भी हैं आप, कहते हैं गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और गोल्डन राग की सुपर संडे वाली महफिल में आप सबका एक बार फिर से है बहुत स्वागत। आपके मैसेजेस के लिए, संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी आवाज़ बदली है क्योंकि सर्दी लगी हुई है। सुनते रहें गोल्डन राग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आपको इंडिया में पैसे भेजने हैं तो उसके लिए आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127 रुपीज़ एंड 80 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Leica Gold.
2: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
5: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
6: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
7: sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
1: It's this weekend. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.
8: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
9: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
8: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
9: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
8: ICICI Bank UK. Transfer now. Celebrate together.
10: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
12: साफो ट्रेवल At all protected.
13: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
14: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
15: Dubai is the place.
14: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
16: Danube 11, 11. Danube Properties.
17: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344. A 24-hour line.
18: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
19: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लता जी और किशोरदा की आवाज में सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म का ये सबसे प्यारा गीत। कभी भी आप सुनो, बड़ा मजा आता है इस फिल्म के। वैसे सारे गीत अच्छे हैं। अगला गाना फिल्म जॉनी मेरा नाम से आने वाला है। ये भी बड़ा नटखट सा गीत है, बड़ा अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया उस दौर में। किशोरदा और आशा ताई की इस गीत में आवाज है। सुनते रहे सुपर संडे वाली महफिल। और इसी के साथ आपको बता दें, फाइनल फ्यू डेज टू गो टू दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस एट ओ वेम्बली अरिना ऑन संडे 27 सितंबर। और दरवाजे खुले रहेंगे 4:30 PM तक, याद रखें। और 5 PM टू 5:45 PM परफॉर्मेंस के लिए गेट्स ओपन हो जाएंगे। 6:15 PM से 9:30 PM के बीच ये चलेगा शो। टिकट्स हैं आपको अवेलेबल www.diwalistory.com पर।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: बस थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ अगले घंटे आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। फिलहाल अगला गाना बड़ा दिल वाला है, क्योंकि फिल्म का नाम ही है बड़ा दिल वाला। किशोर दा और लता जी की आवाज में सुनते हैं गीत।
2: Hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., like a gold and like a radio Midlands.

0: और ऐसा भूल ना जाइएगा, थोड़ी देर में वापस मिलते हैं लता जी और किशोरदा की एक और खूबसूरत पेशकश के साथ। फिल्म का नाम है आंधी, सुनते रहे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Like a gold ace 5.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
5: Four beers, please, garçon!
4: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
7: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
8: हमारी रक्षक है वो।
9: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
10: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
9: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
11: मोस्ट मॉर्गेज ब्रोकर्स चार्ज यू अ फी, बट वी डोंट चार्ज यू अ पेनी एंड वी स्टिल पुट कैश बैक इन योर पॉकेट।
7: हियर्स हाउ इट वर्क्स। व्हेन यू रीमॉर्गेज थ्रू कैशबैक रीमॉर्गेजेस, द बैंक पेज अस अ कमीशन, वी टेक आवर शेयर and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
12: No, sorry mate.
13: No, we don't have that part.
12: Have you tried down the road?
14: We can get it in, but it won't be for a few days.
15: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply, subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
16: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
17: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
18: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट अप टू 300 ऑफ। कॉल सोना टूर्स नाउ ऑन 0208-951-0111।
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: लता जी किशोर दा की आवाज में आंधी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत वाकई में इस फिल्म ने पॉलिटिकल गलियारे में आंधी ही मचा दी थी। आर डी बर्मन साहब और गुलजार साहब का कॉम्बिनेशन और कमाल का ये गीत। अगला गाना मुकेश साहब की आवाज में आपको सुनाएंगे और उसके बाद बताएंगे आप बताएं हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। तो तैयार रहिए दिमाग की बत्ती जलाने के लिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.5 अफगान अफगानी 86.72 पाकिस्तानी रुपीस 371.32 बांग्लादेशी टका 164.73 श्रीलंकन रुपीस 442.88 and $1 almost 134.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £105.11 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: जी।
1: क्या बात है इस गाने की और खास तौर पर इस फिल्म के गीत की। रोशन साहब का बहुत ही सदा हुआ संगीत इस फिल्म के लिए। राज कपूर साहब और नूतन जी इस फिल्म में नजर आई थी। जितना ही सुखद ये प्यारा सा गीत है सुनने में, उतना ही ये खूबसूरती के साथ पिक्चराइज भी किया गया है, क्योंकि बड़े सधे हुए मायूस दिल के साथ राज कपूर साहब इस गीत को गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुकेश साहब नहीं, खुद राज कपूर अपने दिल से इस गीत को गा रहे हैं और उस पर शरारती सी नटखट सी से भावों के साथ एक्सप्रेशंस के साथ नूतन जी उन्हें निहार रही हैं। बड़ा ही प्यारा ये गाना फिल्माया गया। अगर आपको वक्त मिले तो यूट्यूब पर जाएं और ज़रूर इस गाने को देखें। फिलहाल वक्त आ गया है दिमाग की बत्ती जलाने का और आज का गोल्डन वर्ड बताने का। आप बताएं हम सुनाने वाली थीम के लिए, जो कि है बात। भाई बिना बात वैसे भी जज्बात पहुँचाए जा सकते हैं, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है किसी भी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, किसी भी गलत फहमी खुश फहमी को से परे रहने के लिए। और कई बार बातों करने से ही मामले सुलझ जाया करते हैं। तो बस वही बात वाला आपको सॉन्ग सुनना है, अपने निकालना है अपने फरमाइश के पिटारे से और हम तक उसे जल्दी से जल्दी पहुंचा देना है। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल अनुराग के साथ।
2: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
3: तुम देना
4: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: માયા ભાઈની મોજમાણમાં થઈ જાઓ રેડી. માં કૃપા ફાઉન્ડેશન્સ યુકે પ્રેઝન્ટ્સ ભવ્ય ડાયરો માયાભાઈ આહિર, જયશ્રી ભોજવિયા અને નિર્મળસિંહ ઝાલા સાથે 26 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ.
8: વેન્યુ: ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 3, 10 સ્ટોન ફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલીપ, HA40JS.
7: ટિકિટ્સ 30, 40 અને 50 pounds. લાઇટ રિફ્રેશમેન્ટ ઇન્કલુડેડ.
8: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509.
9: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
10: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
9: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
10: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
11: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
10: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
12: Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Cow's Choice, Cow's Choice. 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
14: Cow's Choice, pure ghee. Har chamach mein, shudh desi swai.
15: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
16: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
17: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
18: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
17: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
19: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
0: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
19: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
0: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
19: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
20: On Rug with Golden Rug.

0: feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ज्वेल थी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे। एक गीत हम तक पहुंचा है शरफून जी, पंकज जी और रानी जी से। और इससे पहले हमने आपको जो फिल्म कुर्बानी का गीत सुनाया तो उसमें एक नाम हम लेना भूल गए थे, वो थी हसुमती जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं आशाताई किशोरदा की आवाज़ में। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जियो हॉटस्टार ऐप को, जियो हॉटस्टार ऐप।
3: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: आशा दाई और किशोर दा की आवाज में महल फिल्म का ये बड़ा ही दिल को भाने वाला गीत है। ये गीत हम तक पहुंचाया था शैली जी और याकूब जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस प्यार से गीत को हमारे प्रोग्राम में शामिल कराने के लिए। अगला गीत आ रहा है सानुदा की आवाज़ में। समझ जाइए कौन सी फिल्म हो सकती है, क्योंकि ये गीत खुद सानुदा यानी कि कुमार सानू साहब के लिए भी उनकी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन रखता है। खुद उनकी जुबान से गाया हुआ, सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल। और इसी के साथ
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: ये भी आपको बताते चलें, साउथ ओल्ड ट्रेवल नोन फॉर इट्स कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टैक्ट कीजिए साउथ ओल्ड ट्रेवल को, नंबर है आज ही 0208574 8410। साउथ ओल्ड ट्रेवल इज अटोल प्रोटेक्टेड।
3: Like a gold. Holiday breaks abroad.

0: सानुदा और साधना सरगम जी की आवाज, जुर्म फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, और ये गीत हम तक पहुंचाया गया है अमिताभ जी और भाविन साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। अगला गाना भी बहुत प्यारा आने वाला है, किशोरदा की आवाज, साथ में होंगी आशाताई। आप सुन रहे हैं सुपर संडे वाली महफिल, मैं हूं आपके साथ अनुराग, और तैयार रहिए अगले आवर के लिए भी। गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस मैं आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर रहा हूं।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट,
0: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 34, टाइटल मॉडर्न हैरेसमेंट, होस्टेड बाय दीप राजा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: With up to £3,000 every year towards career growth at Amazon, I started in the warehouse knowing I could train in things like coding or robotics. It turns my job into a career. So it means I can be who I want to be, even if I haven't quite decided who that is yet.
3: Amazon, opening doors with up to £3,000 every year towards career growth. Eligibility conditions about type and duration of employment apply.
4: ये है
5: लाइका गोल्ड,
6: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Visit travelhubworld.com.
8: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
9: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
8: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
9: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
10: हैरो, इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड, हैरो। स्पाइस विलेज हैरो, नाउ ओपन। खाने, मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
11: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: You have one new voice message. New message.
13: Hi Jess, it's Kate, your midwife. I just wanted to follow up on booking your flu vaccine. Flu's always pretty awful, but can be even worse when you're pregnant. Please give me a call back.
14: Flu can put both you and your baby at increased risk of severe complications, including early labour and low birth weight. But the vaccine gives you both the best protection from flu. Speak to your midwife, GP practice or pharmacist. Stay strong, get vaccinated.
15: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती है।
16: इसे हमेशा याद रखना।
17: काश कोई आ जाए।
11: Catch the brand new show Sayoni starts Wednesday the 23rd of September at 6 PM on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
18: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
5: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
19: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app.
20: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे।
21: कहिए कहिए
22: सुनिए सुनिए
21: कहिए कहिए।

0: आशा था कि शुरदा की आवाज में बातों बातों में और ये गीत हम तक पहुंचाया था रितेश कुमार जी, सुखविंदर जी को भी ये गीत पसंद और अगला गाना रफी साहब की आवाज में। फिल्म का नाम ताजमहल। किस शख्स ने इस गीत को हम तक पहुंचाया है उनका नाम हम थोड़ी देर में बताते हैं और इसके बाद एक गीत और रह गया इस आवर में, आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए। तो सुनते रहें और अगला घंटा याद रखें, गोल्डन आग के तीन ऑप्शंस कर रहे हैं आपका इंतजार।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.78 अफगान अफगानी 86.73 376 या पाकिस्तानी रुपीस 371.45 बांग्लादेशी टका 164.65 एंड 1 US डॉलर 1.34।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: भाई क्या है इस वक्त सोने के भाव? गोल्ड इज करेंटली ट्रेडिंग एट 105 pounds and 11 pence पर ग्राम।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

0: किशोरदा की क्लासिक वॉइस में सागर फिल्म का ये ऑल टाइम क्लासिक गीत आप सुन रहे हैं सुपर संडे वाली महफिल अनुराग के साथ। और अब वक्त आ गया है दिल की बत्ती जलाने का। जी हाँ, और हमेशा की तरह अब गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस हम आपको बताएंगे। कायदे प्लस कानून ये है कि ये गानों के ऑप्शंस होंगे जिनमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना है और हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर उसे भेजना है। जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना भारी मतों के साथ बनेगा आज का गोल्डन राग। बड़े प्यारे गीत हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा, दिल कहेगा इस गाने को चुने या इस ऑप्शन को चुने, लेकिन चुनना सिर्फ आपको एक ही है। और ये रहे आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए, तू कहाँ ये बता, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। ऑप्शन बी, नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले, फिल्म का नाम है जो मेरा नाम है अनुराग। ऑप्शन सी है, दिन ढल जाए रात न जाए, फिल्म का नाम है गाइड। बड़ा ही प्यारा गीत है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए, तू कहाँ ये बता, बड़ा ही प्यारा गीत, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। ऑप्शन बी, नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी, फिल्म का नाम है अनुराग। ऑप्शन सी है, दिन ढल जाए रात न जाए, फिल्म का नाम है गाइड। वोटिंग लाइन्स हो चुकी है ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें और दिल की बात सुने। अगला गीत किशोर दा की ही आवाज़ में हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक मोस्ट स्टाइलिश शशि कपूर साहब की फिल्म से जुड़ा हुआ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127 rupees and 80 paise। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स your travel mantra. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you. यू।
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
10: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
11: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
12: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
14: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
15: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
16: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
17: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
16: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
18: It's This Weekend. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.
19: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
20: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
21: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से बताते जाएंगे कि आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है तू कहाँ ये बता, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। ऑप्शन बी नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी, फिल्म का नाम है अनुराग। और ऑप्शन सी है दिन ढल जाए रात ना जाए, फिल्म का नाम है गाइड। अपने अपने वोट कास्ट करते रहे, वोटिंग लाइन्स ओपन है। अगला गीत लता जी और मुकेश साहब की आवाज में, कमाल का ये गाना।
1: ये है Like a Gold Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: heaven.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Phool aahista pheko. बड़े नाजुक होते हैं। प्रेम कहानी फिल्म का एक गीत लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में बड़ा ही कमाल का, और इसके बाद एक और बड़ा ही अच्छा सा गीत आने वाला है आपके लिए लता जी की आवाज़ में। मैं सोच रहा हूँ आपको सुनाऊँ, अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको ये बताऊँ कि उस गीत के बाद आज के लिए हो जाएंगी वोटिंग लाइन्स बंद, इसलिए अभी भी है मौका, लगाते रहें चौका। वोटिंग लाइन्स ओपन है, इसलिए आप लोग अपने ऑप्शन को अभी भी चुन सकते हैं। सिर्फ एक गाना बचा हुआ है, उसके बाद हम आपको बताएंगे आज किस गीत को आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं और बनाया है आज का गोल्डन राग।
1: आप सुन रहे हैं गोल्ड

0: अनुराग के साथ लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट laikaradio.com.
1: When you're watching the match in bed, when you're streaming a game on your commute, when you just have to catch all the action.
2: Come on.
1: Go! Oops, sorry.
2: Who cares? What's a spilt coffee after a goal like that?
1: Nothing brings us together like great TV. And a TV license covers you to watch all TV channels, including live TV on streaming services, so you can cheer along no matter what time you're watching the football. Search TV license together.
3: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
7: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11.
8: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
10: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
11: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
12: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
11: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स. हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
12: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड. कॉल 0192322-7274. बुक योर टेबल टुडे.
13: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी. रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी. कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइस्लिप, HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-2287-509.
14: हमारी रक्षक है वो.
15: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
16: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
15: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन. द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
17: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
18: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
19: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
6: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142. 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
0: On Rug with Golden Rug.
8: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: लता जी की आवाज में दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये गीत सुनने के बाद अब आपको बता सकता हूँ कि मैं वोटिंग लाइन हो चुकी है आज के लिए बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं क्या है सरप्राइज आपके लिए, सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128 रुपीज 58 पैसे, अफगानी 86.38, पाकिस्तानी रुपीज 371.37, बांग्लादेशी टका 164.59, श्रीलंकन रुपीज 443 एंड 1 US डॉलर ऑलमोस्ट 134.
2: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £105.11 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Like a Gold is 5.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: इससे खूबसूरत और क्या गीत हो सकता है रफी साहब की आवाज में। गाइड फिल्म का ये गीत देव साहब का दर्द बयां करता हुआ, और इस गीत को सबसे ज्यादा वोट्स हमें रिसीव हुए हैं, इस ऑप्शन को सबसे ज्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने। जल्दी से लेते हैं नाम, शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ है ये गीत, और SD बर्मन साहब ने क्या म्यूजिक दिया है, और उस पर सोने पे सुहागा जिसे कहा जाता है, रफी साहब की खूबसूरत आवाज। सरफून जी, फरीदा गुलाम अली जी, निखिल जी, निर्मल किरीट, रानी सुनाही, जगदीश जी बुशी से, बॉबी जी, सुचित्रा जी टोची पनेसर, सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा, शेखर जी, राजू, प्रदीप, तल्ला मुजारिया और हजुमती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गीत को हमारे प्रोग्राम में आज का गोल्डन राग बनाने के लिए। होगी आपसे अगले हफ्ते नेक्स्ट वीकेंड में मुलाकात, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी, टेक केयर, बाय बाय।
1: लाइका गोल्ड, क्योंकि सांस भी कभी। दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्योंकि सांस भी कभी बहु थी, एवरी डे एट 9 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साफो ट्रेवल, at all protected. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: Harrow, the wait is over. Prakhyat Spice Village have Harrow ma khuli gayu che. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo ane tandoor ma thi nikrela garma garam fresh naan. Saathe sauthi mota vegetarian menus ma thi ek alag vegetarian kitchen ma tayyar. To family ane friends ne saathe laavo ane maano Spice Village no award winning swad. Avo 124 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now open. Khawa, madwa ane celebrate करवानु तमारू नवू सरनामु।
5: Two businesses,
6: same town,
5: same service.
6: One appears on page one of Google,
5: the other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: London, get ready for an unforgettable night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
8: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
9: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
14: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, दो खूबसूरत गीत मैंने आपके लिए पेश किए और उम्मीद करती हूँ इन गीतों को आपने पसंद किया। पहला गीत था फिल्म गुमराह से, 1993 की फिल्म, और दूसरा गीत था फ्रॉम द फिल्म आशिकों बहारों का, फिल्म से, एंड दैट वाज इन 1977। किशोरदा की आवाज़ शामिल थी और पहले गीत में रूप कुमार राठौर की आवाज़ में आपने खूबसूरत सा गीत सुना। और पहला गीत इसलिए प्रोग्राम में शामिल हुआ, ये फिल्म बनाई थी किसने, महेश भट्ट साहब ने। महेश भट्ट साहब आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। बॉर्न ऑन 20th of September इन 1948 एंड नाउ ही इज़ रिटायर्ड इंडियन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर, नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी सिनेमा। और बहुत सी फिल्में इन्होंने बनाई और इन्हें कितनी दफ़ा नेशनल अवार्ड मिला। इन 80s एंड 90s इनके सिनेमा, इनकी जो फिल्में थी बहुत पॉपुलर हुई थी। ही हैज़ रिसीव्ड अ नंबर ऑफ अक्लेड्स एंड इंक्लूडिंग 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड 4 फिल्म अवार्ड्स एंड अ नोटेबल फिल्म From his earlier period is Saransh। आप सबको याद होगा जब इन्होंने अनुपम खेर को लिया था इस फिल्म में, बहुत खूबसूरत फिल्म थी एंड अनुपम खेर साहब का काम भी बहुत खूबसूरत था। दैट वॉज इन 1984 एंड उसके बाद हाँ ये भी बता दूँ कि ये फिल्म जो थी दैट वॉज स्क्रीन ऑन द 14th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड इट बिकेम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द एकेडमिक अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म दैट ईयर। एंड 1986 में इन्होंने फिल्म बनाई थी नाम, जिसके गाने भी बड़े मशहूर हुए थे और फिल्म भी बड़ी अच्छी थी, और ख़ास तौर पर उस फिल्म का ये गीत चिट्ठी आई है बहुत फेमस हुआ था। और बहुत कुछ बातें और भी होंगी महेश भट्ट साहब के बारे में, और ट्राई करूँगी कुछ और गीत नेक्स्ट आवर में भी और उससे अगले आवर में भी आप तक पहुँचा पाऊँ। चलिए अब आपने जान ही लिया होगा कि आज के प्रोग्राम के इस आवर में कौन से क्या मौजू है, कौन से वर्ड पर गीत आने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई ख़ास पसंद हो तो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। वैसे मैंने प्लेलिस्ट अपनी तैयार रखी है, बड़े अच्छे अच्छे गीत मैंने शामिल करने के लिए क्यों कर दिए हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, मौसम है आशिकाना, देन मैं आशिक हूँ बहारों का, एंड ऐसे मैं बहुत सारे गीत मैंने शामिल यू नो प्लेलिस्ट में कर दिए हैं। पर आपकी कोई ख़ास पसंद हो तो आप मुझे ज़रूर लिखकर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए लाइका गोल्ड पर 1035 पर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, DAB पर, अलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com पर सुना जाता है। आप मैनचेस्टर में हैं, बर्मिंगम में हैं, लेस्टर में हैं, मिडलैंड्स में, कहीं भी हैं, जहाँ भी बैठे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। और अब तो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर हैज़ लॉन्च्ड अक्रॉस ब्रैडफोर्ड एंड लीड्स में भी, तो ये जानकारी अपने जानने वालों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी लाइका रेडियो नेटवर्क के प्रोग्रामों का लुत्फ उठा सकें। अब आपकी बारी है, ज़रा पूछ लूँ कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। किसी वजह से अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जियो शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और तिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आपके लिए, आपकी पसंद की कसौटी पर खरे उतर जाएं तो मुझे ज़रूर इस बात का एहसास दिलाइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, SBI UK के ज़रिए अगर आप पैसे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आज आपका 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू अप टू 127 रुपीज़ एंड 80 पैसा से, डिपेंड्स कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI YONO मोबाइल ऐप के ज़रिए। टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: हमारी रक्षक है वो.
4: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
5: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
4: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है.
1: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
9: Your brain now, play the game.
10: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
1: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough, on Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
12: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
13: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
14: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel, at all protected. London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: 1967 की फिल्म थी, नाम था जिसका फर्ज, और इस फिल्म का गीत आप तक हमने पहुंचाया लता जी एंड मुकेश जी की आवाज़ों में। फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म में काम किसने किया था, डू यू रिमेम्बर? जितेंद्र एंड बबीता ने। गीत पसंद आया आपको? अगर हाँ तो अपने होने का एहसास दिला दें और जल्दी से मुझे बता भी दीजिए, और मैं आपको बता दूं कि ये गीत आप तक पहुंचाया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Right, ab main zara aapko yaad dila dun, waise hamare yahan se aap roz sunte hain कि ये दिवाली स्टोरी इज़ कमिंग, सो फाइनल फ्यू डेज रह गए हैं। दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेट।

0: Work. It takes place on OVO Wembley Arena on Sunday, 27th September. Doors will open at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. and then the main performance is from 6:15 till 9:30 p.m. आप जरूर जाइएगा और आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और टिकट्स के लिए यू कैन विजिट www.diwalistory.com. यहाँ जाइए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं. ये थी एक सूचना और अब अगले गीत की तरफ.
1: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Another song in Mukesh Ji's voice. Film ka naam Aashiq 1962.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स।
3: मस्त बा

0: रफ़ी साहब की आवाज़ में ज़बरदस्त गीत आपने सुना। उम्मीद कर रही हूँ सभी गीत आपको पसंद आ रहे हैं, आपके मैसेजेस बराबर मिल रहे हैं। रजिंदर सिंह कालरा जी, थैंक यू नरिंदर पंचाल जी, आपसे मिलकर कल बहुत खुशी हुई। उल्लास टोरंटो में सुन रही हैं प्रोग्राम। एंड निर्मल अंकिरत जी, अरुणा जी, हाना भारती जी एंड सोनी रावल जी, आप सभी सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। स्टैनमोर में कौन सुन रहे हैं, किरण सुन रही हैं। एंड बानबी सुन रही हैं फ्रॉम वैंकूवर, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। एंड अर्जुन जी, इंतशा, बहुत सारे नाम हैं, आपके नाम भी जरूर लूंगी, लेकिन जरा पहले ये काम कर लें।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.63, Afghanis 86.39, Pakistani rupees 371.36, Bangladeshi taka 164.54, Sri Lankan rupee 443, Kenyan shillings 173.46 and US dollars 1.33.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Right, gold ka rate is work market mein chal raha 105 pounds and 11 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold. Gold. Reminisce those classics.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड।
0: और ये मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ, किसने लिखा है, लाउटन एसेक्स में है। एंड जगतार सिंह जी सांगा, आपने लिखा, हेलो सरिता सबरवाल जी फ्रॉम लाउटन एसेक्स इंग्लैंड, फ्रॉम जगतार सिंह सांगा जी ऑफ वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, आपका सुंदर प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आप आजकल क्या लंदन में आए हुए हैं? अगर लंदन में आए हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप कनाडा में सुन रहे हैं प्रोग्राम तो भी आपका स्वागत करती हूँ, इसी तरह से इंजॉय करते रहें। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, इंतशाब तोची जी, मिसेज शेख एंड तोशी, अमृता जी आप भी सुन रही हैं, सोनी रावल जी, अमरजीत सूरा आपने भी याद दिलाया मुझे कि आप सुनती हैं प्रोग्राम। एंड रमीला जी, तारी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गीत इसके बाद।
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
1: This part of the show is brought to you by ये रिश्ता क्या कहलाता है, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
6: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
5: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
6: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
7: We're finally going home for the wedding.
8: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11, 11.
10: Call the Danu Properties London office today on 02 03 96.

0: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
1: Cow's Choice Pure Ghee. Har chamach mein shudh desi swaad.
2: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. વિઝિટ maharajatours.co.uk ઓર કોલ 07956154846.
3: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
4: ओह, लुक एट दैट बंप, यू ग्लोइंग.
5: ओह, थैंक्स.
4: हैव यू हैड योर हूपिंग कॉफ एंड आरएसवी वैक्सीन्स येट?
5: ओह नो, नॉट येट.
4: डेफिनेटली गेट बोथ. माय नीस कॉट आरएसवी आफ्टर शी वाज बॉर्न. इट वाज ऑफुल.
6: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong. Get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy-vaccinations.
7: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
8: लाइका गोल्ड, ऑफिशियली लंदन्स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन.
9: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: जगजीत जी की सोलफुल वॉइस में आपने ये गीत सुना, नज़्म सुनी, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी उतना ही इन्जॉय किया जितना आपकी प्रेजेंटर सरिता ने। ये प्रोग्राम का सेकेंड आवर है, इट्स 14 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, और उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे गाने इस आवर के स्पेशली आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे और अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाएंगे। मुझे बता देंगे कि कहाँ बैठे आपके कानों में ये रस खुल रहा है। अब ये दो गाने जो मैंने आप तक पहुँचाए, ये महेश भट्ट जी की ही फिल्मों के गीत थे, और आप सभी जानते हैं अर्थ भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी एंड क्रिमिनल आल्सो इन 1995। आज महेश भट्ट साहब अपना बर्थडे मना रहे हैं, उन्हें हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। एट द एज ऑफ 26 महेश भट्ट मेड हिज डेब्यू एज ए डायरेक्टर विद द फिल्म कॉल मंजिलें और भी हैं। देन उसमें स्टार किया था कबीर बेदी ने, साथ में थी प्रेमा नारायण इन 1974। एंड देन हिज 1979 फिल्म लहू के दो रंग स्टारिंग शबाना आजमी एंड विनोद खन्ना इन लीड रोल वन टू फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 1980। And Helen received her first Filmfare as Best Supporting Actress, and Madhurkar Shinde won award for Best Art Direction. So इनके साथ साथ बहुत सी सारी फिल्में इनकी एवरेज रही बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन इन्हें बहुत बहुत acclaim मिला। He was noticed and received great critical acclaim with art film called Earth. आपने देखी होगी ज़रूर, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। एंड उसके बाद जन्म इन 1985, सारांश इन 1984। सो ऐसी बहुत सी यादगार फिल्में महेश भट्ट साहब ने बनाई हैं। एंड हिज बिगेस्ट रिलीज विद म्यूजिकल रोमांस वाज आप सभी जानते हैं आशिकी इन 1990, और उसके बाद उसमें भी इन्होंने राहुल रॉय एंड अनु अग्रवाल को एंड दीपक तिजोरी को लॉन्च किया था। दिल है कि मानता में आमिर खान थे, और साथ में अपनी बेटी पूजा भट्ट को इन्होंने लॉन्च किया। देन केम साथी, साथी के भी गाने बड़े खूबसूरत थे। 91 की फिल्म थी जिसमें आदित्य पंचोली को इन्होंने लॉन्च किया, एंड देन अतुल अग्निहोत्री को इन फिल्म कॉल सर। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट को इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। आज हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं महेश भट्ट जी के नाम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 80 paisas today. And you can go to the branch to transfer money or online or SBI Yono mobile app ke zariye aap paise transfer kar sakte hain India mein kahin bhi. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Join us at the Mercedes-Benz Vans Advantage event from the 14th to the 23rd of September. Order your new or approved used Mercedes-Benz van and unlock unmissable event-exclusive offers. And that's on top of existing offers across the range. Your Mercedes-Benz van is waiting for you. Take advantage and drive your business forward. Search Mercedes-Benz Advantage online and book your appointment at your local dealer. Mercedes-Benz Vans. We've got your back. Offers end 23rd of September. Selected models subject to availability at participating dealers. T's and C's apply.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: London, get ready for an unforgettable night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
7: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
8: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24. Four-hour line.
10: Big Boss में इस बार मिलेगा प्रदान और एक्स्ट्रा जीवन दान. तब हंस तू मेरी जान.
1: Big Boss Season 20 every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house exclusively on Jio Hotstar.
11: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
13: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
14: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
14: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
14: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold. Aur online suno leicagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

1970s, yes, और इतने प्यारे प्यारी फिल्मों में काम किया था राजेश खन्ना ने। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी आशा पारेख और ये फिल्म शक्ति सामंत साहब ने डायरेक्ट की थी और गुलशन नंदा के नॉवल पर ये बेस्ड थी कटी पतंग। और बहुत खूबसूरत गीत थे इस फिल्म के जिन्हें संगीतबद्ध किसने किया था आपको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बता देती हूँ, राहुल देव बर्मन जी ने संगीतबद्ध किए। गीत बड़े पॉपुलर हुए थे और कटी पतंग बहुत खूबसूरत फिल्म थी एंड इस फिल्म को अवार्ड्स भी मिले थे, नॉमिनेशंस भी मिली थी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नॉमिनेटेड शक्ति सामंत, बेस्ट एक्टर राजेश खन्ना, बेस्ट लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, ना कोई उमंग है उस गीत के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर किशोर दा ये जो मोहब्बत है उस गीत के लिए, एंड बेस्ट स्टोरी गुलशन नंदा जी को, एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आशा पारेख को। और आशा पारेख जी की एक्टिंग भी इस फिल्म में लाजवाब थी, बहुत खूबसूरत। अब ये गीत एंड ऑल्सो रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इन दिस आवर ये किसी के

0: एंड मुझे भी इस पार्टी का हिस्सा बनाया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत इंजॉय किया एंड इनके बच्चों की तरफ से मम्मी पापा को, अपनी सिस्टर को बहुत सारा प्यार और हैप्पी बर्थडे कहते हैं। सागर इज़ देयर सन और सागर की वाइफ जैकलीन की तरफ से पूजा एंड साहिल आपको भी बहुत बहुत मुबारक। एंड एक बात उस पार्टी की ये भी थी कि संगीत बहुत खूबसूरत था, ख़ास तौर पर संगीता मेलेकर एंड सुरेश मिश्रा, सर्वेश मिश्रा, ये इंडिया से आए थे यहाँ ख़ास तौर पर इनके बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए, और उन्होंने ये सारे गीत गाए जो मेरी प्लेलिस्ट पर इस वक्त हैं। जानना चाहेंगे कौन कौन से गीत हैं तो सुनते रहिएगा, कहीं जाने का नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला गाना आप तक पहुंचाया किसने?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Sadabahar Geet. जिसे भी अपनी अपनी महबूबा के नाम करना है जल्दी से कर दीजिए, ज़रा उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख लें, वो खुश हो जाएंगे। गाना तो मैं सुनवा दूंगी मुकेश जी की आवाज़ में, लेकिन ज़रा अपनी महबूबा की तरफ देख लीजिएगा, उन्हें खुशी होगी। होता है ना ऐसे सभी प्यार करने वालों के नाम, प्यारा सा गीत।

0: रेखा एंड मानिक कह रही हैं, रेखा जी लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, माई हस्बैंड किरित हैज डेडिकेटेड दिस सॉन्ग टू मी, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अरुणा जी कहती हैं क्या बात है, संतोष जी कहती हैं मेरे नाम कर दिया ये गीत, थैंक यू। उल्लास आपको भी बहुत पसंद आए एंड शी सेंड मी सो मैनी हग्स, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। और ये बता दूँ कि ये गाना आप तक पहुँचाया किसने?
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like
0: a बिल्कुल जी, आपके साथ ही हूँ मैं टिल 7 o'clock। 7 बजे आएंगे हमारे सैंडी शाह जो आप तक पहुँचाएंगे विंटेज गोल्ड प्रोग्राम। और इला जी एंड जयश जी, आपकी पसंद अभी नहीं आई है लेकिन कुछ देर इंतज़ार बनता है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आप वाला गीत भी आ रहा है। राइट, आपको बताना चाहूँगी कि कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ एंड जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट ऑन योर फोन और ऑन योर टीवी। और एक इन्फॉर्मेशन और है और वो ये है कि बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खां आ रहे हैं, TCO प्रेजेंट्स उस्ताद राहत फ़तेह अली खां अ ट्रिब्यूट टू हिज अंकल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां ऑन हिज 30th डेथ एनिवर्सरी, वन डेट ओनली, संडे 18 अप्रैल 2027। टिकटें अभी से बुक कर लें। O2 लंदन में होने वाला है ये शो, रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। और संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदेसानी लाइव, यस जेज एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स टू यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद संजय कपूर, आफ्ताब शिवदेसानी, सिंगर अरमान त्रिखा एंड मयूरी पटालिया। एंड ये भी 27th को हो रहा है, यस अभी 27th संडे को, सितंबर की 27th को लेस्टर के डी मॉन्टफोर्ट हॉल में, एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो। और अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, आपका गीत मैं प्ले करने जा रही हूँ ऑन योर वेरी ओन लाइका गोल्ड। कहाँ बैठे सुन रहे हैं बता दीजिए।
2: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold.

0: भाई इसी के साथ हम पहुंच गए हैं न्यूज़ के बिल्कुल करीब और कुछ ही देर में आप 6 बजे के समाचार सुनेंगे। मानसी जी आपका भी थैंक्स करना चाहूँगी, दिनेश पोपट जी यू हैव जॉइन अस एज वेल, भारती जी, सोइनी रावल जी, अंजकतार जी, मनु जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस आवर के सारे गाने आपने पसंद किए और ख़ासतौर पर जयेश एंड उर्मिला जी आपने 70th बर्थडे मनाया, आपको बहुत बहुत बधाई। इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर वेडिंग एनिवर्सरी और इसी तरह से आप सबका आपस में प्यार बना रहे और आपके घर संसार में हमेशा खुशियों का वास रहे। इतनी सारी बातें सरिता ने आपसे कह दी। चलिए अब समाचारों की तरफ बढ़ते हैं। समाचारों के उस पार मैं आप ही के साथ हूँ टिल 7 o'clock।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: Top stories this hour. Princess Diana's brothers repeated an allegation made in his new book that the then Prince Charles said his sister would be forgotten soon enough following her death in 1997.
3: I'm not sure I can say exactly what went through my mind, but I really was so stunned. And I just, after a stunned silence, I said, I cannot believe you just said that. And I hung up on him.
2: Speaking to the BBC, Earl Spencer says it followed what he calls a rant about her funeral. He claims to know more about the king he's chosen not to include. Buckingham Palace previously said grief can colour memory in ways others don't recognise. The head of Girl Guiding says she welcomes the opportunity to bring girls' experience and perspectives into discussions with the government around tackling gender-based violence. A national task force has been launched. Police have made a second murder arrest after the remains of a woman were found 7 years after disappearing. Bones were discovered in an area of shrubland in Feltham in West London in August after a wildfire the previous week. Ed Sheeran says mistakes were made after Macklemore was dropped from the British Stars World Tour, prompting his band and support acts to quit in solidarity. The rapper had made comments in support of Palestine. Sport now, Liverpool head coach Andoni Iraola enjoyed a 1-0 winning return to his old club Bournemouth in the Premier League.
4: I'm always happy with the result because I know this is a difficult place to come, a very difficult place to get the 3 points, and we could see it in the game, especially at the beginning of the game, I think in the first 20 minutes.
2: Elsewhere, leaders Manchester City made it 5 wins from 5 by beating Sunderland 5-3. Celtic have suffered 3 straight defeats in all competitions after losing 1-0 at home to Rangers in the Scottish Premiership. And Luke Littler has fallen short in his attempt to win every major PDC title in 2026. The 19-year-old lost 10-4 to Johnny Clayton in the last 8 of the World Series of Darts finals in Amsterdam. From Sky News, I'm Chris Milligan.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: राइट, लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स में आज सनी रहा एंड जेंटल ब्रीज भी चलती रही। एंड टुमारो 21st को लंदन में सूरज देवता अपने दर्शन देते रहेंगे एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल रिमेन 22। मैनचेस्टर में भी 20 डिग्री रहेगा पर बादल छाए रहेंगे। और कल मिडलैंड्स में टेम्परेचर और डाउन हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस और कभी धूप कभी छांव रहेगी। अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
0: This is the last and the final hour of the show. और मैं सरिता आपको बता दूं कि प्रोग्राम के इस आवर में भी पहले 2 गाने मैंने चुने हैं महेश भट्ट साहब की ही फिल्मों के, एक सड़क से और दूसरा फिल्म नाम से। और बाकी के गीत मिले जुले रहेंगे, कुछ फिल्में जो आज के दिन रिलीज हुई, कुछ उनके गीत।
5: Leica
1: Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
0: TravelHub.
6: At all protected.
1: Leica. Sarita Sabharwal.

0: बैक टू बैक दो गाने सुने महेश भट्ट साहब की ही फिल्मों के, उन्होंने डायरेक्ट की थी ये फिल्में। और पहला गीत इस सावर का था फ्रॉम द फिल्म सड़क इन 1991 एंड दूसरा गीत था फिल्म नाम से 1986 की फिल्म थी। और इसके अलावा उन्होंने दिल है कि मानता नहीं बहुत सारी फिल्में हैं, गुनाह इन 1993, स्वाभिमान था इनका एक ड्रामा सीरियल वो भी बहुत चला था, एंड देन कभी कभी 1997 में इन्होंने एक ड्रामा सीरियल किया था, ये डायरेक्टेड द टीवी सीरियल कभी कभी इन 1997। और फिल्मों की तो बात ही छोड़िए, आशिकी देन दिल है कि मानता नहीं मैंने बता दिया आपको, नाम सारांश जन्म बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई हैं। और आई एम लकी वन कि मैं उनसे मिल पाई और उनसे उनका इंटरव्यू भी किया था टीवी के ज़माने में। सो बहुत अच्छी तरह से ये और करण जौहर के डैड यश जौहर जी दोनों एक साथ थे, एंड फिल्म का नाम था आई थिंक डुप्लीकेट, जिसके लॉन्च के लिए वो लोग यहाँ आए हुए थे। सो उनसे मुलाकात हुई और बहुत मज़ा आया था। चलिए भी अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ, आपका खैर मकदम है। इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको तो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा साथ देना होता है एवरी वीकेंड, सैटरडे एंड संडे मैं आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। तो नेक्स्ट वीक याद रखिएगा सैटरडे आपकी सेवा में हाजिर होंगी। वैसे मैं अभी यहीं हूँ फॉर अनदर 46 मिनट्स, यस इट्स 6:14 नियरली 6:15 नाउ। तो सुनिए और भी बहुत से प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में कहीं भी पैसे भेजना चाहते हैं तो आज आपका 1 British sterling pound can get you कितने पैसे? 127 rupees and 80 paisas against 1 pound। और आप ब्रांच में जाके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और SBI योनो मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड किया है तो ऐप के जरिए आप घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: और पहले तो बता दूं कि नेक्स्ट इज़ आर्टिस्ट ऑफ द वीक, और इस वीक हमारे आर्टिस्ट रहे शशि कपूर साहब, जिन्होंने बहुत सी यादगार फिल्मों में काम किया है और बहुत से इतने मीठे मीठे गाने उन पर पिक्चराइज हुए हैं। और मैंने चुना है फिल्म शर्मीली का ये गीत, उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। आफ्टर दीज वर्ड्स
2: जॉइन अस एट द मर्सिडीज बेंज वैन्स एडवांटेज इवेंट फ्रॉम द 14th टू द 23rd ऑफ सितंबर। ऑर्डर योर न्यू और अप्रूव्ड यूज्ड मर्सिडीज बेंज वैन एंड अनलॉक अनमिसेबल इवेंट एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एंड दैट्स ऑन टॉप ऑफ existing offers across the range. Your Mercedes-Benz van is waiting for you. Take advantage and drive your business forward. Search Mercedes-Benz Advantage online and book your appointment at your local dealer. Mercedes-Benz vans. We've got your back. Offers end 23rd of September. Selected models subject to availability at participating dealers. T's and C's apply.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
4: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
5: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
5: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
5: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
5: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA. CRA and regulated by the FCA and PRA.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
9: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र।
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
11: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
12: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
12: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
13: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11.
14: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
15: Dubai is the place.
4: 11, 11.
14: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
15: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
16: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
12: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
17: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
18: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
17: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
19: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
20: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: शशि कपूर एंड राखी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। फिल्म का नाम था शर्मिली, 1971 की फिल्म। आप सभी प्यार करने वालों के नाम किया। और अगला गीत आ रहा है डेरी वैली वालों की तरफ से आप सबके नाम, लेकिन मैं आप सबके नाम भी कर दूं। थैंक यू सो मच, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। संध्या बाब सर थैंक यू, वजाहत जो एलेक्सा पर हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं, तनवीर साहब, मुनज़्ज़ा जी आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, इन्जॉय कर रहे हैं, मानसी, दिनेश पोपट जी एंड किशोर जी आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रजिंदर सिंह काला जी आप भी सुन रहे हैं, स्वीटी जी आप भी सुन रहे हैं। आज विमल रायन नहीं आई है, मैंने मिस किया आपको। एनीवे हो सकता है कि कहीं काम में मसरूफ होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये गीत भी बहुत खूबसूरत है, आप पसंद करेंगे जरूर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: देखिए ना, चलते चलते हम भी तो बिल्कुल करीब आ गए हैं न्यूज के और मेरे जाने का वक्त सुन।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जी हाँ हितेन जी, आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत।
3: ये है लाइका गोल्ड
0: और भी अगला गीत मैंने चुना है, फिल्म का नाम है दूर का राही और इसका रीज़न ये है कि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी 20th of September in 1971, जिसमें किशोर कुमार, अशोक कुमार एंड तनुजा ने काम किया था। किशोर कुमार ने इसे डायरेक्ट किया था एंड संगीत भी किशोर दा का था एंड शैलेंद्र जी ने लिखे थे गीत। तो मुझे उम्मीद है ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा।
4: दिस सुपरहिट ट्रैक इज़ ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यू कैन मेक एवरी मील memorable.
0: गाना बड़ा मशहूर हुआ था, किशोरदा एंड सुलक्षणा पंडित ने गाया था, बेकरार दिल तू गाए जा। और आज ही के दिन रिलीज हुई थी दुश्मन दुनिया का, शशि कपूर, जितेंद्र एंड सुमन लुथा ने इसमें काम किया था, महमूद साहब ने डायरेक्ट एंड अनु मलिक का संगीत था। 1996 में आई थी फिल्म।

कितने मेरे साथी ऐसे हैं जो अगर उनके हस्बैंड उनके पार्टनर कह दे हाँ तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, और मेरे बहुत से साथियों ने सही जवाब दिया सुलक्षणा पंडित और सिंगर।

0: किशोर दयान लता जी की आवाज़ें, लेकिन ये गाना पिक्चराइज किस पे हुआ, जितेंद्र एंड नीतू सिंह पर और नीतू सिंह एंड राकेश रोशन पर। ये फिल्म बासु चटर्जी ने बनाई थी, नाम था फिल्म का प्रियतमा। एंड ये फिल्म भी आज ही के दिन 20th of September in 1977 में रिलीज हुई थी, जिसका संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: राइट, आपको बता दें कि इस वक्त करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है, आपका एक पाउंड आपको क्या दिला सकता है, जल्दी से जानते हैं। अरे भाई, ये पेज क्यों गुम हो जाता है। राइट, इंडियन रुपीस अगेंस्ट वन पाउंड 128 रुपीस एंड 66 पैसास, अफगानिस 86.39, पाकिस्तानी रुपीस 371.34, बांग्लादेशी टका 164.50, श्रीलंकन रुपीस 443.1, Kenyan shilling 173.46 and US dollars 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Leica. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: भाई, गोल्ड का रेट हर रोज बदलता जा रहा है। 105 pounds and 11 pence का आपको मिलेगा आज एक ग्राम सोना।
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: नीसा नासिर, लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में। मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।
0: लाइक अ गोल्ड, जी हाँ, लाइका रेडियो नेटवर्क पर इस वक्त ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। मैं हूँ सरिता सबरवाल। अब देखिए ना, घड़ी की सुइयां बता रही हैं सरिता जाने का वक्त है। जाने से पहले इंतशाब आपका भी थैंक्स करना चाहूँगी, लिखती हैं एब्सोल्युटली लवली शो, थैंक यू। ललित पटेल जी, मानसी जी, अरविंद जी, भारती जी थोड़ा लेट आए हैं, कोई बात नहीं। और इसी तरह से मैं चाहूँगी आने वाले दिनों में भी साथ देते रहें। फरीदा गुलाम अली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इंजॉय कर रही हैं प्रोग्राम। रोज़ी रगीना, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। अब आज के प्रोग्राम का लास्ट गाना मैंने क्यों किया हुआ है, गाना बड़ा प्यारा है, मन की आंखें फिल्म का गीत है। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं, क्या करूं, दिल तो मेरा भी है, रुक जाऊं, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो नेक्स्ट प्रेजेंटर कैसे आएंगे। बता दूं कि आज विंटेज गोल्ड में आपका साथ देने के लिए आए हैं अभिषेक, ही विल बी हेयर टिल 10 o'clock। 10 बजे के बाद आप गोल्ड नाइट सुन पाएंगे, हमारी ओवरनाइट सर्विस। और फिर कल मंडे है तो मंडे वही सिलसिला शुरू होगा, काजल ब्रेकफास्ट शो में। और काजल के बाद आते हैं कौन, रवि शर्मा जी, रवि शर्मा जी के बाद बाली ब्रह्मभट्ट, और बाली ब्रह्मभट्ट के बाद सैंडी शाह, देन अनीसा नासिर एंड दस। इसी तरह से सिलसिला ये आगे बढ़ता रहता है। मैं जाती हूँ, जाते जाते यही कहूँगी, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते चहकते महकते रहें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और अभिषेक यहाँ आ रहे हैं तो दूसरी तरफ नीरज होंगे लाइका रेडियो पर एंड मैनचेस्टर रेडियो पर, जैसे ही आपका साथ निभाएंगे। Bye-bye, take care, have a lovely and superb week ahead. Bye-bye.
1: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Southall Travel.
3: call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: South All Travel at all protected.
5: हैरो इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
4: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se
7: bol chudiya.
4: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल टुडे.
10: sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208 951 0111. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208 767 2142.
11: Hey, प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
12: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
13: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: पतंगा फिल्म का ये गाना भाई किसकी आवाज में था? शमशाद बेगम की आवाज। और पतंगा किस 1940 के दशक में आई थी, और इसमें जो संगीत था वो सी रामचंद्र का था। सी रामचंद्र, आपको ये पता है कि लता मंगेशकर श्री रामचंद्र की लगभग भक्त थी। उनके इनिशियल कैरियर में सी रामचंद्र जी की लगभग भक्ति उन्हीं के साथ हमेशा उन्हीं के पास रहने का प्रयास करती थी कि उन्हें एक चांस मिल जाए। सी रामचंद्र उस समय काफ़ी बड़े संगीतकार हुआ करते थे। इस फिल्म में ज़्यादातर गाने लता मंगेशकर ने गाए हैं और कुछ गाने सी रामचंद्र और शमशाद बेगम ने भी गाए हैं। फिलहाल ये गाना जो आपने सुना वो शमशाद बेगम की आवाज़ में था। फिल्म का नाम था पतंगा।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Final few days to go to the Diwali story brought to you by Sanatan Events and exclusive radio partner Laika Radio Network. It takes place at OVO Wembley Arena on 27th of September. Door opens at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main performance from 6:15 p.m. to 9:30 p.m. Book your tickets on www.diwalistory.com.
1: This is Laika Gold, non-stop classics.
3: Aha, yeah.

0: सफर।
1: और आप भी साथ में हमिंग करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। हेमंत कुमार और उनका साथ दे रही थी आशा भोसले, एक झलक फिल्म का ये गाना।
2: Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर एक युगल गाने को आपके घर तक पहुंचाते हुए, रात और दिन फिल्म का ये गाना। और रात और दिन फिल्म मेरे ख्याल से शंकर जयकिशन का इसमें म्यूजिक रहा और दो संगीतकारों ने इसमें संगीत किया था, हसरत जयपुरी ने और शैलेंद्र ने। पर ये गाना लगता है कि शायद शैलेंद्र की कलम से निकला था। अरे बड़ा ही अच्छा गाना बढ़ पड़ा भाई, दिल की गिरह खोल दो। और स्क्रीन पर कौन नजर आए थे अगर आपको याद बन पड़ाता है तो बताइए भाई कौन थे स्क्रीन पर।
1: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Ya Wo. Only Like a Gold.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: sonatours.co.uk 13 days Vietnam and Cambodia departures every month September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Classics to make your weekends feel good. This is Sandy Shah on Like a Gold.
2: वो थी हम थे

हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, अन्य अन्य अन्य प्यार हो

0: खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना है याने याने याने प्यार हो गया।
1: और मस्ती भरे गाने की अगर बात की जाए और उसमें किशोर कुमार का नाम ना आए तो भाई क्या होगा, पर किशोर कुमार के साथ चलती का नाम गाड़ी फिल्म में और भी थे, कौन थे भाई, वो सब एक ही परिवार के थे। आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर डालिए और बताइए कौन कौन थे। दो तीन लोग तो बड़े ही प्रसिद्ध रहे पर एक और भी उसमें नाम था, अगर आपने वो सारे नाम मुझे बताए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा और मुझे लगता है आपको भी नाम बताने में बड़ी खुशी होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ रुपए पैसों की बात।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: If you use LemFi, £1 can get you up to 128 Indian rupees, 85 Afghan Afghani, 371 Pakistani rupees, 164 Bangladeshi taka, 443 Sri Lankan rupees and 1.3 US dollars.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £105.11 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. London's biggest classics all day. Leica Gold.

0: खुद सजा।
1: दो कलिया फिल्म का ये गाना जो इसी गाने का एक सेट वर्जन है, मतलब एक दूसरा वर्जन भी है जो कि काफी हंसता गुनगुनाता था, पर ये एक सैड वर्जन। और ये हमको ले जाएगा इस आवर के एंड तक, और इस आवर के बाद मैं आपको उस तरफ मिलूंगा। फिलहाल आपको राजकुमारी जी के साथ छोड़ जाता हूँ, पाकीज़ा फिल्म का होगा ये गाना।
2: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile.

0: सुरैया की मस्तानी आवाज़, आज की रात फिल्म का गाना 1940 के दशक में। और इस फिल्म में जो म्यूजिक दिया था भाई, एक बड़े ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर होते थे उस जमाने में, शायद 40, 50 और 60 के दशक में भी उन्होंने कुछ काम किया, बहुत सारी फिल्में तो नहीं की। उनका नाम था हुसन लाल भगत राम। दो लोगों की ये जोड़ी, हुसन लाल जी और भगत राम जी की, बहुत कम फिल्में पर उनके गाने यहाँ बजते रहते हैं। जैसे आपने शायद किस फिल्म का नाम लिया जाए भाई, अमर कहानी फिल्म के नाम सुना होगा, बड़ी बहन, उसके भी गाने विंटेज से बजते रहते हैं, उनमें अपना संगीत दिया। फिलहाल इस गाने पर, इस गाने को लिखने वाले कौन थे भाई, मुझे लगता है शायद राजेंद्र किशन थे। आपने सुना लाइका गोल्ड से, आगे भी है ऐसा ही एक कुछ गाना।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Like a gold is 5. Across Greater London and Greater Manchester, this is Sandy Shah.

0: गीता दत्त के साथ तलत महमूद बहु फिल्म में अपने एक युगल गीत में 1955 की ये फिल्म।
1: This is Like a Gold. Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold Greater London.
2: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ तुम।

सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोल

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछली पट्टम दमली पट्टम दमली पट्टम मछली पट्टम, ओंगोल नर्द गोल नर्द गोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, शोरनूर कोटनूर शोरनूर कोटनूर, चुक चुक चुक चुक चुक चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

0: यही वो गाना था जो मैं कल आपको सुनाना चाहता था। एक अशोक कुमार का गाना कल सुनाया था और कहा था कि एक और गाना सुनाऊंगा पर शायद जम नहीं पाया। यह है हमारे अशोक कुमार 1960 में रैप का एक गाना गाते हुए।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holidays deals to Dubai. Contact Southall Travels today on 0208574 8410. Southall is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory

0: मुकेश जी की आवाज़ और ठोकर फिल्म का गाना ये था मैं ढूंढता हूँ जिनको। भाई मुकेश जी की आवाज़ इस गाने में ऐसा लग रहा था कि शायद इको मतलब थोड़ी दूर से सुनाई दे रही थी। मेरे ख्याल से गाना इस तरह का जान करके बनाया गया, भाई जान करके ही बनाया गया है भाई। इतने बड़े बड़े संगीतकार, इतने अच्छे म्यूजिशियंस, पर एक दूर से आती हुई आवाज़, इस तरह के गाने लगते हैं कि सिर्फ रेडियो के लिए ही बनाए गए हैं। मैं ढूंढता हूँ जिनको मुकेश जी की आवाज़ में।
1: Leica Extra Podcast Update.
0: Deep Raja speaks to Sangeeta Pandey of IIW and Gayatri Shenoy, Principal Business Analyst at Modern Harassment. That's episode number 34 for Leica Extra Podcast. They explore modern harassment at work, family, and when one should speak up. Leica Extra Podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Honey, I was in the pet aisle and you'll never guess what.
3: What is that?
2: A gerbil. They were on sale.
3: Why would we want that?
2: They were doing 3 for 2.
4: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses, and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, a wonderful everyday.
5: Leica Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: Harrow, the wait is over. Prakhyat Spice Village have Harrow ma khuli gayu che. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo ane tandoor ma thi nikrela garma garam fresh naan. Saathe sauthi mota vegetarian menus ma thi ek alag vegetarian kitchen ma tayyar.

0: बैजू बावरा फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी और उनके साथियों की आवाज़ में 1952 में आई थी ये फिल्म। संगीत नौशाद का और इस गाने के बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने। भाई इस तरह के गाने उस तरह के लोग ही लिख सकते हैं, उस तरह के लोग ही बना सकते हैं और उस तरह के लोग ही गा सकते हैं। कौन भाई? मोहम्मद रफ़ी, नौशाद और शकील बदायूनी। और क्या चाहिए भाई, इसे कहते हैं कि एक गोल्ड निकल कर आता है और जब वो गोल्ड यहाँ विंटेज गोल्ड से बचता है तो भाई क्या कहने।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 in British sterling, if you use LemFi, can give you 128 Indian rupees, 85 Afghan Afghani, 370 Pakistani rupees, 164 Bangladeshi taka and 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: सोने का भाव भी बताते चले भाई। सोने का भाव ध्यान से सुन लीजिए। सोने का भाव बताते चले। It's trending at 105.11 pound per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. This is Like a Gold.

0: और आपको अगर सुरों का ध्यान है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये गाना किस राग पर बना था, और गाने वाले तो भाई महान कलाकार एस डी बीस्ट और मन्ना डे की आवाज़, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गाना। इस तरह के क्लासिकल गाने बहुत बहुत बहुत पसंद आते हैं मुझे भी और हमारे सुनने वालों को भी। आपके मैसेज की एक झड़ी सी लग गई ये गाना सुनकर। मैंने ये नहीं सोचा था कि शायद इतना दिल के करीब पहुँच जाएगा ये गाना कुछ लोगों के। आपके मैसेजेस के लिए धन्यवाद भाई, और भी ऐसे ही कुछ गाने इस प्रोग्राम में।
1: ये है
2: Laika Gold,
1: क्योंकि सांस भी कभी।
2: This part of the show is sponsored by क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी, every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Hey gorgeous, join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
4: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
3: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
4: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर travel mantra.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Cow's choice. 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 0734-520-666.
8: Cow's choice, pure ghee. Har chamach mein shudh desi swad.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
11: LYCA. This is Laika.

0: मोहम्मद रफी के इस लुभावने और रोमांटिक गाने के साथ हम आ पहुंचे हैं सेकंड आवर के लगभग अंत के आसपास। भाई आप लोगों के आते हुए मैसेज बता रहे हैं कि आपको अभी तक जितने भी गाने यहां से बजाए गए बहुत अच्छे लगे, एक सुनने वाले को शायद कुछ पसंद नहीं आए। तो भाई हम उसका भी आदर करते हैं, हम उस बात का भी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपको शायद कुछ गाने पसंद नहीं आ रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग है। विंटेज विंटेज में सारे गाने बहुत ही अच्छे होंगे। एक और गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: लता मंगेशकर की आवाज, अनपढ़ फिल्म का ये गाना दिल को छू जाने वाला। और प्रोग्राम की शुरुआत करी थी किशोर कुमार के गाने के साथ, दूर का राही फिल्म का ये गाना था। बहुत सारे हमारे लिसनर पूछ रहे हैं कि वो किस फिल्म का गाना था, दूर की फिल्म दूर की फिल्म नहीं, दूर का राही फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार की आवाज़ में। किशोर कुमार की आवाज़ लगती तो नहीं पर बड़ा ही अच्छा गाना था, जीवन से नहार। चाहे आप सुबह सुनिए या फिर शाम को या दोपहर में, जब भी सुनेंगे आपको लगेगा कि वाह भाई क्या गाना है, जीवन को थोड़ी प्रेरणा देता। और उसके बाद लता मंगेशकर, जैसा कि मैंने कहा, है इसी में प्यार की आबरू। यह विंटेज गोल्ड का थर्ड एंड फाइनल आवर, विंटेज गोल्ड को थर्ड आवर में और भी थोड़ा गहरा करने की सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे और इसी तरह के गाने लगाऊंगा मैं। फिलहाल एसबीआई वाले कुछ कहना चाहते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your pound in British sterling can get you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: And now, the weather.
3: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle and a chilly wind blowing from the west, north, east and south.
4: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
10: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
10: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: हमारी रक्षक है वो।
13: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
14: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
13: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
15: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just 1,800 £690 with a 7-year guarantee.
16: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
17: Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: और हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रहे शशि कपूर भाई. आज उनके लिए ये आखिरी गाना 1960 के दशक में जो फिल्म आई थी उसे उसमें मुकेश और आशा भोंसले की आवाज़ मोहब्बत, इसको कहते हैं फिल्म का नाम.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: केएल साइकिल की आवाज़ भाई, केएल साइकिल काफ़ी लोगों की प्रेरणा स्रोत रहे भैया। मुकेश जी, शायद आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में सुना हो, अपने शुरुआती समय में केएल सहगल को बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे, उनसे उनकी तरह गाने की कोशिश करते थे। शाहजहां फिल्म का ये गाना केएल सहगल की आवाज़ में, और इस गाने पर संगीत किसका होगा भाई, किसका हो सकता है, नौशाद जी का संगीत था। और लिखने वाले कौन थे अगर आपको याद बन पड़ाता है तो बताइए, या फिर चलिए छोड़िए, बता देते हैं, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था ये गीत, विश्वास होता है 1946 के दशक में आई ये फिल्म शाहजहां। ये है प्योर गोल्ड, विंटेज गोल्ड को भी एक लेवल ऊपर ले जाते हुए कम दिए मुश्तकिल केएल सहगल की आवाज़ आपके घरों तक पहुँची।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Like a gold is 5. Ye hai like a gold.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: लता मंगेशकर की आवाज है, ये बावर्ची फिल्म का गाना पहली बार इस रेडियो पर बज रहा है। और बावर्ची फिल्म तो भाई क्या कहने, हमारे राजेश खन्ना उनके साथ जया भादुड़ी, कोई प्रेम कथा नहीं, एक बढ़िया सी स्टोरी।
1: ये है लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़, भाभी फिल्म का ये गाना बड़ा ही अच्छा भाई, पतंग को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही मधुरम।
1: Feel good classics all day, like a gold.

0: शमशाद बेगम के साथ जोहरा जी की भी आवाज, अनमोल घड़ी का ये गाना लगभग अंत की तरफ पहुंच चुके हैं।
1: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
5: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
2: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
6: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी, रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी। कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2, साउथ राइसलिप HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मा जरूर जोड़ाओ। वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-87509.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: It's This Weekend. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.
11: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
12: Visit mantraholidays.co.uk or call 0203773633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
14: No more worries for me.
15: Southall Travel, at all protected.
16: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
17: London's number one Asian retro music station, Leica Gold is 5.

और इस गाने के साथ हम विंटेज के आज के सफर के लगभग अंत के आसपास पहुंच चुके हैं भाई। आज आप अभिषेक दीक्षित को सैंडी शाह की जगह सुन रहे थे। और अंत की शुरुआत करी है ममता फिल्म के इस गाने के साथ, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। फिलहाल आपको छोड़े जा रहे हैं मन्ना डे के साथ। अभी के लिए, अभी का मतलब मेरा, अभिषेक दीक्षित का शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए। शुभरात्रि। 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
4: Hey!
3: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
6: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 6333 now. Apta bonded. Mantra holidays. What's your travel mantra?
7: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
8: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
7: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
8: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
11: गोल्ड पर हर रात की यही पुराने मगर सर

0: Non-stop classics. This is Like a Gold.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
2: Oh, terrible weather.
1: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
3: See ya, good luck with the interview.
2: Thank you, bye.
1: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
9: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।